अभी आप सुन रहे थे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुनने वालों द माइटी मुकेश जी से आप सुनेंगे जाऊँ कहाँ बताए दियो।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दियो। तुम मुझे यूं भूला न पाओगे। फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूँ भूला न पाओगे। वादिया मेरा दामन लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अभिलाषा।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से लता जी की आवाज में वादियाँ मेरा दामन। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। रमाइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। एक बहुत सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और फ्रॉम द मूवी चोर मचाए शोर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी चोर मचाए शोर, एक डाल पर तोता बोले और एक डाल पर मैना। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले, फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने आपको सुनाने वाले हैं मुकेश जी के साथ में लता जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चले, लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूरत से आप सुनेंगे, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं।

सुन रहे थे चेहरे पे गिरी सूफे मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सूरज से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है कि आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं एक बार फिर से फ्रॉम द मूवी लोफर से आप सुनेंगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है और ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं धीरज के तरफ से आरती जी के वास्ते, और ये दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो इन दोनों के वास्ते हम पेश करते हैं और माता बेस्ट यानी माता बेत्सी जी के वास्ते भी।

अभी आप सुन रहे थे, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी लोफर से। और ये गीत हमने पेश किए हैं माता बस्ती जी के वास्ते और ख़ास करके धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते। कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है तो लेट मत करो। किस्मत से मिलती है ऐसे लोग जो अपना वक्त किसी और के नाम कर देते हैं। सुनने वालों, प्रेम कहानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोरदा की आवाज़ में, और गीत का बोल है, दोनों किसी को नज़र नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो

लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले थे, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए, फ्रॉम द मूवी प्रेम कहानी से हमने पेश किए हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। हेलो, विश्वास है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते नमाइती मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी विश्वास सिदम माइती, मुकेश जी की आवाज़ में। सुनने वालों, जरा साहब देखे, जी हाँ, फिल्म का नाम है सारंगा और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल, हाँ दीवाना हूँ मैं।

अभी आप सुन रहे थे हाँ दीवाना हूँ मैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फ्रॉम द मूवी राम और श्याम से आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फ्रॉम द मूवी राम और श्याम से हमने पेश किए हैं। मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी कन्यादान से आप सुनेंगे।

0: tips voor dunnere en zachtere nieuwe.
1: सुनने वालों, कोई और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आप सुनेंगे, मैं हूँ साखी तू है शराबी शराबी।

आप सुन रहे थे मैं हूँ सागी, तू है शराबी शराबी। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक व्यक्ति जो है वो ये प्रोग्राम को सुन रही है। वैसे तो कई है, लेकिन उनमें से एक है गीता महावीर जी। तो गीता महावीर जी के वास्ते ये सुंदर सा सॉन्ग हम चलाते हैं आप यानी आपके वास्ते, फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत खास करके हमने पेश किए हैं गीता महावीर जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को सुन रही है। आँखों में कयामत के काजल महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी किस्मत से आप सुनेंगे।

आँखों में कयामत के काजल, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा, द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करें। उषा खन्ना के साथ में महेंद्र कपूर जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करें अभी आप सुन रहे थे। रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है।

आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम।

0: wist je dat banken jou...
1: हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए भी आप सुन रहे थे गीत तेरे सांस का तेरी ही आवाज़ हूँ लता जी आपको सुनाने वाले हैं

फ्रॉम द मूवी इंतकाम से भी आप सुन रहे थे गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ लता जी आपको सुनाने वाले थे। माइती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और मुकेश जी आपको क्या सुनाने वाले हैं? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा रूप भर

हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

0: अभी आप सुन रहे थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए काहे को दुनिया बनाए, द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तीसरी कसम। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती कोतर से।
1: मेरे दिल से

सुन रहे थे मेरी दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के। नए लोगों के आने से पुराने की कीमत कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम एक बार फिर से फ्रॉम द मूवी इज्जत से। हम पेश करते हैं क्या मिले ऐसे लोगों से।

अभी आप सुन रहे थे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्रत छुपी रहे। मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूम के इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि जिंदगी तो सस्ती है, जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने का तरीका थोड़ा महंगा है।

फ्रॉम द मूवी संतान से हमने पेश किए हैं रमायती। मुकेश जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे तू मिले तो पूछूं तुझसे क्या ये है न्याय तेरा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं।

फ्रॉम द मूवी संगम से हमने पेश किए है ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मजदू। एक बात हमेशा याद रखे, कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है पर नसीब से नहीं। फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला, मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले मिलकर सुनाने वाले थे। उम्मीद, उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत।

आप सुन रहे थे सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे फ्रॉम द मूवी आप आए बहार आए, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तकलीफ़ क्या होती है। तकलीफ़ ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सिर्फ अपनी दिखती है, दूसरों की नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। फ्रॉम द मूफ यानी फ्रॉम द मूफी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, जिद से हासिल हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती।
1: क्या मजाक लगा रखा है, चलना है कि नहीं आपको? आप खाती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुझे तो फंसा दिया, आप चलते हैं कि नहीं? देखो, पहाड़ उतरना आसान काम नहीं, पाँव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है?
2: मुझे माफ कर दीजिए।
1: माफ किया, चलो अब। अच्छा बाबा, माफ किया, अब चलो उठो,

0: तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है ओ मेरी सोना रे सोना रे सोना। अभी आप सुन रहे
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके कामे आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों।

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो, युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरना। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एफर्गिन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन्स का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जिन्ना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकेडिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है। चलो हमने चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकेडिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, 1962 का है। जे ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी में, आप लोग के लिए चलते हैं नेहा में, जौहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा ट्विंस में, आँखियों का नूर है तू।

या दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नहीं कहती 5-6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नहीं कहती 5-6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं।

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखा में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मौज की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

न कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू, जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा का।

भक्तों, ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझाया गया।

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होंगे कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी गाने जो आप चाहते हैं। जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा दुलार पहुँचे, पैगाम भी पहुँचे। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल जारजू, जो अब से लेकर 11 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। जहाँ पे दुख है, जहाँ पे ढेर सारे दुख है, हर एक दुख के घर में हमारा पूरा टीम आपके साथ है। जहाँ पे मातम है वहाँ भी हमारा साथ है, पूरा टीम रेडियो फहुन के साथ है। भगवान इसे सहन शक्ति दे हर एक चीज़ सहने के लिए, एक दुख को सहने के लिए। जहाँ पे खुशी है वहाँ भी हमारा साथ है। तो आज हमारा प्रोग्राम चलेगी दोस्तों जैसे हमेशा चलते ही मंगलवार के, और हम आप चलाएंगे कुछ भजने हैं, कुछ अच्छे अच्छे गाने हैं, कुछ भजन है, कुछ अच्छे अच्छे गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाने वाले हैं। आज मंगलवार है, 28 जुलाई हो चुका है 2026 में हम चला चुके हैं। घड़ी की तरफ देखा जाए तो 5:08 हो चुका है। हमारा तुम्हारा साथ है, 11 बजे तक हम रहेंगे, उसे 12 बजे तक रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ वजह ही 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। तो कुछ गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ आपके सुनाने के लिए। हम चलते कुछ भजन के रूप में, कुछ भजन जैसे गाने ही, और वही मैं आप लोग के सुनाऊंगा। 9 बजे तक हमारा भजन प्रोग्राम रहेंगे, उसके बाद हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं, आप सब चुन हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे, जो दनक शहर से हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोग के बताना चाहता हूँ, ये जो आज का प्रोग्राम है मेरा। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं। मानूं तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानूं तो बहता पानी है, बोले मान तो देव ना मान तो पत्थर है। हर एक जो इस वक्त अपने पूजा पे है, अपने पूजा कर रहे, भगवान से सभी कुछ दे, हर एक दुख से बचा के रखे। जो इस वक्त अपना नौकरी पे जा रहे हैं, जो इस वक्त दाम पे है, कार चलाते हैं, हर एक को बचा के चलना चाहिए, हर एक चीज़ बचा के करना चाहिए। आज मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है। जो अभी जग चुका है, अपना कॉफ़ी पी रहा है, आप सबको हम एक शुभ दिन कहते हैं। नामस हे लतिम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से

मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानू तो बहता पानी। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं हरिओम शरण की तरफ एक हनुमान चालीसा हम सुनते हैं, मिलकर सुनेंगे। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे।

जी हाँ, हमारे सुनने वालों, ये हनुमान भजन है और इसे सुनने से दिल हल्का हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं। ये जो भजन मैं आपके लिए चला रहा हूँ, हर एक जो इस वक्त पूजा करते हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग सुनते हैं, हर एक के लिए ये भजन थे। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं सोनू निगम की तरफ, वो भी अच्छे अच्छे भजन को गाया है। आज मंगलवार सुबह का प्रोग्राम है।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले ये शिवा का एक भजन था जो मैंने आप लोग के सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी मुझे एक को लिखा है जो श्याम पूरन है, वो इस एक गाने को मांग किया है, मुझे ऐप किया है, मुझे कॉल किया है कि एक भजन को सुना दे मेरे लिए। मेरा ओकर रिफलिंग भजन है। ठीक है भाई श्याम पूरन, हम गाने को चलाते हैं, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और हम आपका भजन आपके सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, श्री राम के गली में जाना, वहाँ नाश्ते मिलेगी राम को। आप देख सकते हैं नाश्ते हुए, शुभ का प्रोग्राम है, मंगलवार है दोस्तों, अख्तन जुली हो चुका है 2026, और भजन का प्रोग्राम है, जहाँ तक की आवाज़ पहुँचे, ढेर सारा पैगाम पहुँचे, मोहब्बत भी पहुँचे। हम चलाते अगले भजन और मिलके हम सब सुनेंगे क्या भजन है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे तन में भी राम, न्यू स्टाइल पे भजन है और आप लोग के मैंने सुनाया है। आप सब चुन है फोन रेडियो से, फोन हिंदुस्तानी रेडियो से आप सब चुन है दोस्तों। और हम चलते हैं आगे, देखा जाए तो जुबिन नौदियाल ने कुछ अच्छे अच्छे भजन को गाया है। चलो हम एक जुबिन नौदियाल के आवाज़ से कुछ भजन आप लोग सुनाते हैं।

0: जी हाँ, हमारे सुनने वालों, यहाँ तक थे हमारा भजन का प्रोग्राम। एक घंटे का भजन का प्रोग्राम थे, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। हम आगे ले चलते हैं आप लोग के कुछ न्यूज़ से, कुछ रिकलामों के, और उसके बाद हम आपके साथ फिरेंगे। यूँ चला, यूँ गया और यूँ आ गया। कुछ न्यूज़ से कुछ बयान है, उसके बाद हम कुछ गाने चलाएँगे आप लोग के लिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: जी हाँ, हमारे सुनने वाले, यहाँ तक थे भजन के प्रोग्राम और कुछ न्यूज़ कुछ बयान अभी आप सुन रहे थे। यहाँ से हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोगों को सुनाएंगे। और जैसे आप जानते हैं तो हमारा प्रोग्राम एक सवाल था, सवाल का हल करने वाले को आज मेरे पास वक्त है, वक्त भी नहीं है, हर एक फरमाइश को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को हम सभी को प्रोग्राम, सभी को फरमाइश हम ज़रूर पूरा करेंगे। आज हम कुछ चलाएंगे कुमार शानू के गाना आप लोग के लिए, और हम ज़रूर जानते हैं कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा कि ये गाने जो है, गीत गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं कुछ अच्छी ढंग से है। कुमार शानू का आवाज़ हम सुनाएंगे आप लोग के। आप लोग जानते ही वो टाइगर है, टाइगर रहेगा और टाइगर भी है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव, द लव फाउन हिंदुस्तान रेडियो पे चुन है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, हमारा ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, प्यार पहुँचे, पैगाम भी पहुँचे। काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। काफ़ी लोग जो ऐप मुझे कर दिया है, और एक सवाल था मेरा जो आप लोग का हल करना है। काफ़ी अंतर थे जो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अंतर थे जो सही नहीं है। इस जवाब का जो हल आप लोगों ने दिया है, सही भी है, सही भी नहीं है, और हम सिर्फ सही हल के हम आप लोग के गाने ज़रूर सुनाएंगे। आपको हक बनते हैं एक गाने मांगने के लिए, सिर्फ सही जवाब पे, सही सवाल पे। मेरा सवाल था कि गटाई बा मुड़ी ना बा, हाँ थाई अमरी ना बा, ई कौनची बा। अगर आप जानते हैं सही जवाब तो मुझे ऐप कीजिए। मेरा तार का नंबर खुल चुका है 0 0 3 3 3 2। और जो भी काम करवाना चाहते हैं आप, एक फरमाइश दवाना चाहते हैं और एक मौती का खबर दवाना चाहते हैं, जो भी काम आपको है Call kijje, studio ka nummer 07-365-22-477. Ek baar hum fir se herhaal karte hai. 07-365-22-247. Hamara studio khula hai. Somwar se lekar sukwar tak. Subah 9 baje se lekar 5 baje tak. Aaiye ya mujhe call kijye is number par. Theek hai dosto, hum le chalte hai. Aapko देखा जाए कितनी हसरत है हमें और ये कुमार शानू साधना सरगम की आवाज़ है. म्यूजिक जो बजाया गया है नदीम शरवन और इसका लायरिक्स जो है जो इस गाने को सजा करके लिख करके स्याही और हाथ जो लिखा गया है वो और कोई नहीं है ज़मीर. हम आप लोग को सुनाते हैं कितनी हसरत है.

जी हाँ दोस्तों, कितने हसरत है हमें दिल लगाने के कुमार शानू, शादना सरगम और यार नहीं खन तक के गाना है, गीत है जो हम आप लोग के सुनाने चाहते हैं। जी खैर दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा तुम्हारा साथ 11 बजे तक है। दोस्तों कुछ बजे है कि हम 12 बजे तक नहीं रहेंगे, 10 बजे के बाद हम आप लोग के फरमाइश से जरूर पूरा करेंगे। लोग जितने प्यार से ऐप से मुझे गाना मांग किया है, हम आप लोग के ज़रूर पूरा करेंगे, आप लोग के मांग को हम ज़रूर पूरा करेंगे। फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चुन हैं, ऐसे ही चुन रहना। ठीक है दोस्तों, हम ले चलते हैं मूवी धड़कन। यहाँ पे अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण ने गाया है। हम आप लोग को सुनाते हैं सुबह का प्रोग्राम है। घड़ी की तरफ देखा जाए 5:09 हो चुका है, 28 जुलाई 2026 में हम चला चुका है। और जहाँ पे हम हैं देखते हैं बाहर, तो सरसराहट हवा चल रहा है। नदी के किनारे हम बैठे हैं जहाँ पे लोग लव बोट में बैठ कर कटिया लगाते हैं और मछली को पकड़ते हैं। और ये जो मछली पकड़ रहा है, मछली वाला गाना हम आप लोग को सुनाते हैं। दिल में ये कहाँ है, दिल से

कहते हैं मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। क्या लिरिक्स है यार, जमीर ने इस गाने को लिखा है सजा करके, हाथ और कलम स्याही जो चलाएगा यार वो जमीर है, और क्या लिरिक्स है यार। ठीक है दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं, हम सब सुनेंगे

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतार कर देखो। सच में तो कहा है, दिल में घुस के देख कैसा दिल है, काला है या सफेद है। सच्ची तो कहा है मूवी सलामी नेकिन फिल्म नेकिन तक कहे आशा भोसले कुमार शानू का आवाज लायरी से समीर म्यूजिक नदीम शर्वन इसमें काम किया है अयूब खान और संयुक्ता सिंह। जी दोस्तों हम आगे चलते हैं फिर से एक बार फिल्म धड़कन से निकाला हुआ ये गीत जो मैं आप लोग सुनाने वाला हूं जिसपे काम किया है अक्षय कुमार जिल्पा सेती। देखा जाए क्या गाना है, कहते हैं आई एम लव आई एम लव। जैसे आप सब द एवरग्रीन द एवरग्रीन लव फाउंडेशन पिचून है वैसे आई एम लव मिल के हम सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, आई एम लव मूवी धड़कन, और देखा जाए तो अलका याग्निक उदित नारायण का आवाज, नदीम शर्मा का म्यूजिक है, जमीर लाइरिक्स। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, कर न सके हम प्यार का सौदा। देखा जाए तो अलका याग्निक कुमार शानु का आवाज, फिर से एक बार नदीम शर्मा और म्यूजिक और जमीर जो लिखा है इस गाने को।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीती हुई बाजी को हारना पड़ता है ना, बस बेचारा हार जाते हैं। ऐसे बातें हो रहा है इस दुनिया में, जीती हुई बाजी हार जाते हैं लोग ना। ठीक है दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले का वास, कुमार शानू, नदीम शरवन और जमीर का लाइरिक से। हम आप लोग एक बार फिर सिलेक्ट करते हैं मूफी धड़कन, देखा जाए अलका याग्नि, फिर से लाइरिक से जमीर और कंपोजर है नदीर शफी शर्मा राठौर। चलो आपको ले चलते जिसमें अक्षय कुमार, शिल्पा सेठी, सुनील सेठी और महिमा चौधरी इस गाने पे डांस किया है और काफी हलचल मचा रखा था जब फिल्म धड़कन निकला था। आप लोग मिलके सुनते हैं।

दुनिया में। जी दोस्तों, नदीम शर्मा। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के सुनाने वाले हैं, आगे चलते हैं, देखा जाए मूवी सदक, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। संजय दत्त, पूजा भट्ट इस फिल्म में काम किया है, अनुराधा पौल दुवर और मनहर उदास की आवाज है, लिरिक्स और म्यूजिक समीर जमीर और सुरेंद्र सती रनी मलिक इसमें इसका हाथ है इस म्यूजिक में और लिरिक्स में।

जहाँ दोस्तों हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते मूवी सदक और अनुराधा पौल और मनहर उदास की आवाज अभी आप सुन रहे थे। चलो हम आप लोग के ले चलते हैं दिल है तुम्हारा अलकायन कुमार शानुगुरी नाइन की आवाज है। चलो हम ले चलते देखा जाए सॉन्ग्स मोहब्बत दिल का शतक और दिल है कि मांगता नहीं मूवी है अलका याग्निक कुमार जानू उदित नारायण के आवाज़ है। म्यूजिक नदीम शरवन और फिर से जमीर का लाइरिक्स है दोस्तों। चलो हम सुनाते हैं

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, देखा जाए मूवी दिल है तुम्हारा मोहब्बत का ये स्वरूप, आल कायंगनी कुमार जानू और उदित नारायण की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। चलो हम आपके ले चलते हैं मूवी कसम नई कंतिन अख्तम तख्तक का ये गाना है, गाया गया है आशा भोसले, नितिन मुकेश, लाइरिक्स अनजान इंदौर और म्यूजिक है पप्पी लहरी का।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ न्यूज़ और कुछ रेखलम अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था प्रोग्राम और एक घंटे का प्रोग्राम हम चलाएंगे कुछ अपने तरफ से, कुछ नामंस है लतीम फाहून फाहून हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हमारा जितना कोलेगा है सभी की तरफ से हम कुछ गाने भी सुनाएंगे आप लोग के। और पहला गीत जो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ वो है सुरेन भगवान दीन, जो उसका क्लिप निकल चुका है और हेमंदा का इस गाना गाने को गाया है या दिल के सुनो। ये क्लिप कल निकला है दोस्तों और अभी मैं आप लोग के उसका आवाज़ में अंदाज में आप लोग के सुनाने वाला हूँ। और आप लोग के अगर आप लोग जा सकते हैं YouTube पे और उसका क्लिप को देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं क्या अंदाज में गाया है। इसका म्यूजिक जो बजाया गया है, कंपोज किया गया है, वो और कोई नहीं है अशोक अयोध्या जो म्यूजिक को बजाया है, काफ़ी नाम कमाया है। वो तुनसी का जब आशनी गा रहे थे तुनसी में तो उसका तुस्निस था कीबोर्ड बजा रहे थे तुनसी में। और आज हम सुरेन भगवान दीन के गाने आप लोग को सुनाते हैं और क्लिप को देखना चाहते हैं और लाइक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सुरेन भगवान दीन आपको ज़रूर मिलेगा यूट्यूब पे, जिसे हम आर्टिस्ट नाम है बीरबल, बीरबल के नाम से हम जानते हैं उसे। और काफ़ी अंदाज में इस गाने को गाया है, हम आप लोग को सुनाते हैं और उसके बाद हम चलाएंगे फरमाइशें, जो काफ़ी दो तीन फरमाइशें हैं, उसके बाद हम अपनी तरफ से कुछ गाने आप लोग को सुनाने वाला है।

जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये था सुरेन। भगवान दीन, क्या अंदाज में गाया भाई सुरेन, क्या अच्छा गाया है, क्या आवाज में गाया है। अगर आप मुझे भी देखना चाहते इस क्लिप में, मैं भी इस क्लिप में भाई सुरेन के साथ हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कौन है अनिल सारजू, तो देखिए मैं सुरेन भाई के साथ हूँ और क्या अच्छे इस गाने को गाया। क्लिप आप देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे गाना है। हेमंत कुमार, हेमंत दादा का गाना इसने गाया है। भाई सुरेन बहुत अच्छे गाए रहा है, बहुत अच्छे इस गाने को गाया है, अंदाज में गाया है, सुर में गाया है, और बहुत हम सोचते हैं इसका म्यूजिक जो बजाया गया है न्यू स्टाइल में बजाया गया है, और भाई अशोक अयोध्या इस म्यूजिक को बजाया है, काफ़ी अच्छा बजाया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं नई मई का, जहाँ पे क्रिश भाई प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया मैंने कहा है, वो जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। अब जजे देवे तो ढेर मनई हमें ऐप कर दे के ही अंतोर था, तो हल जदे देवे तो सब कोई हमें हल के गाना मांग ले हरिक दे। ठीक है, हम इस काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं। अगर आप सही जवाब को देंगे सही सवाल पे, सवाल था गटाई बा मुड़ी नबा, हाथ है अमूरी नबा, रारा वात इस दात कौन ची है। जब सभी जब हम जवाब दे दे तब तो खतमक लक हो जाए था सुखवार के। तब तक के लिए हम वेट करते हैं, ऐप कीजिए मेरा तार का नंबर 9043808333। तब तक के लिए हम चलते हैं नई मई की तरफ, जहां क्रिश भाई प्रोग्राम को सुनते हैं, भौजी भी सुनते हैं, राम राम नमस्कार। और सही जवाब दिया है, मांग क्या है, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने के लिए। और काफ़ी अच्छा गाना मांगा है भाई क्रिश और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का म्यूजिक है, इंदिवर का लाइरिक्स है। चलो हम देखते हैं, आपको सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, दई मेघ से क्रिश सारजू, क्रिश भाई जो प्रोग्राम को सुनते काफ़ी पसंद करते हैं, और मांग क्या था, सही जवाब को दिया, मांग क्या था, हमने अपना सब कुछ खोया, मूवी सरस्वती चंद्रा और सॉन्ग्स बाय मुकेश। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, इन दिवर का लाइरिक्स है दोस्तों। ठीक है भाई क्रिश, हम आपका गीत आपके घर तक पहुंचा दिया, कान तक पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद का प्रोग्राम को सुनते हैं क्रिश भाई, मुझे बहुत पसंद है कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं और लाइक भी करते हैं, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। जी दोस्तों, हम चलते हैं आगे। रॉय मंगली इस वक्त ट्रेन में है और खुरुनिंगन जा है। ठीक है रॉय मंगली, खूब घाम है, खूब अब तो सब जंगल दिख जाइए ना। ठीक है, और सही जवाब को दिया है, और मांग क्या है, और देखो जाए, पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक निकाला हुआ गाना है, और क्या अच्छी गाना को मांग किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता हूँ, मूवी पहचान। देखा जाए हसत जयपुरी का म्यूजिक है और लाइरिक से मलिक। ठीक है, हम आप लोग को सुनाते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज, और जा रहा है भाई रॉय इस गाने को ले के जा रहा है दम से खुरुनिंगन। सबके सलाम बोल दिए, दुआ कर दिए हुआ पर भी, और तने बकेंद कर दिए हुआ भी, चाहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सब चुने वो सब भी सुन सकते हैं। रॉय भाई आपका गाना आ रहा है, हमारे साथ दे रहा है हमारा करो को फरमासी तेक चेंस में, वो अच्छी बहुत अच्छी गाते हैं, और काफ़ी दिन से हमारा उसे दोस्ती है, सदा फाहून को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो लीजिए एकदम ट्रेन में हम तो खतिन गनवा पठा लोचा, मुझे सुनिए, आपका नाम है भाई मंगली।

सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।

जी हाँ दोस्तों, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ऐसे होता है, मूवी पहचान से निकाला हुआ गाना है। ठीक है भाई रॉय, आप खड़े होने जा रहे हैं, प्यार से चाहिए हील फेनरेस और प्यार से फोन को सुनते जाइए। रॉय ने कहा मैं प्यार से रेडियो फोन को सुनते सुनते चला जाएंगे। ठीक है रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। देखा जाए एक फरमाइश और है, वो है सुनीता बुधाई जो दैनिक शहर से सईद पारक से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है। दिल के टुकड़े कर कर मुस्कुराते चल दिए। देखा जाए ये है फिल्म दाता नेक्रसीवंत का, जिसमें विनोद मेहरा काम किया है। और देखा जाए देखिए तो के इसे बजाई से और म्यूजिक है उषा खन्ना के और लिरिक्स तो ना दिखाए मैं। ठीक है हम चलाते हैं। सुनीता आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, सही जवाब को दिया है और आपका मांग मैं पूरा करता हूँ, वादा करके नहीं भुलाऊंगा, वादा करके निभाना हम जानते हैं। आपके नाम दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। देखा जाए जेसु और मूवी है दाता नहीं कहती नहीं सही फन तक के

जी हाँ दोस्तों, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। अभी आप इस गाने को सुना है और मांग क्या है सुनीता बुधाई ने, क्या गाना को मांगा है सुनीता जी। ठीक है, आप प्रोग्राम को सुनते ऐसे ही सुनते रहना और सही जवाब भी देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा ऐप का लाइन क्लोज हो चुका है। अब मुझे कल से आप ऐप कर सकते हैं, कल से आप मुझे ऐप कर सकते हैं। और सवाल था, मेरा सवाल है कि गटाई बा मुड़ीना है, हाथ है अमरीना बा कुंची बा रारा वात इस दात। सही जवाब देगा तो आप गाने को मांग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हम अपना प्रोग्राम को चलाएंगे। ये जो गाना मैं अब चुन पे रखा हूँ, चुन करके रखा है, ये नामस इधर इन है, नामस फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के हमारा सारी कुलेखा की तरफ से फाहुन करोक फरमासी के लिए। और तेक चैंस करोक फरमासी जो हमारा ग्रुप है, हर अतवार के हम कारा को करते हैं और उन सब हमारा जो लेद है सबके लिए। और जो भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं जहाँ तलक जितने दूर तक की आवाज़ जाते हैं, हम उन सब के लिए नामस फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से हम इस गाने को आप लोग के नाम करते हैं। ये खामोशियाँ ये तन्हाई पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ है और आशा भोसले, लायरिक्स है राजेंद्र कृष्णा और म्यूजिक है रफ़ी। मूवी हैगा ये रास्ता है प्यार की, हम सुनते हैं अशोक कुमार सुनील दत्त और लीना नायतू इसमें काम किया है। हम नामस इधर इन, नामस इधर इन, हम लोग सबके खतनी का नाम दाय करी लो, नामस द एवरग्रीन लव, द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हमारा पूरा लेदा की तरफ से।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हसत जयपुरी का लाइरिक से और शंकर जय किशन का म्यूजिक अभी आप सुने थे। तारों से प्यारे दिल के इशारे मूवी दीवाना नेकंती जई फिल्म सस्तक की मुकेश की आवाज राज कपूर और सायरा बानो इस फिल्म में काम किया है। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं, देखा जाए मेरे नैना सावन भादो मूवी महबूबा। किशोर कुमार की आवाज है, म्यूजिक कंपोजर है एर दे बर्मन, लाइरिक से आनंद बक्सी का जिसमें हरेश खन्ना हेमा मालिनी ने काम किया है।

हम आपसे जरूर माफी मांगते ही, मैंने कहा था कि सूरदा की आवाज, लेकिन ये तो करो का दिल जीतने वाला लता मंगेशकर थे। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी गाना हम चलाएंगे नमस पूरा टीम की तरफ से हर एक के लिए, और देखा जाए ये है, ये भी है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और सुमन कल्याणपुर के गाना है दोस्तों। तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, छोटी सी मुलाकात नहीं कहती, सैफ अनंत शेस्तक का गाना है दोस्तों। देखा जाए जो इसका म्यूजिक बजाया है वो और कोई नहीं, शंकर जय किशन है, हसरत जय पुरी का हाथ कलम और स्याही से लिखा गया गाना है। हम आपको सुनाते एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम न्यूज और कुछ रिक्लामों की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हम आप गाना चलाते हैं, अभी हम आपसे बात करते हैं।

0: जहाँ दोस्तों तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने। छोटी सी मुलाकात नहीं कहती, सिर्फ सस्त का ये मूवी है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज और सुल्तान कल्याणपुरी, शंकर जय किशन का म्यूजिक है, और जो हाथ जो सिहाई चला गया है इस गाने पे वो हसत जयपुरी है। इस पे काम किया है उत्तम कुमार और फियंती माला ने। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आज का प्रोग्राम यहाँ तक थे, हमारा तुम्हारा साथ 11 बजे तक थे। इजाज़त दीजिए मुझे भी आने और जाने के, एक वक्त भी होती है मुझे, एक घंटा मुझे प्रोग्राम और था 12 बजे तक, लेकिन मुझे भी कुछ करना है इसलिए 11 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। और जहाँ तक ये आवाज़ भी पहुँचा है वहाँ तक सभी को मैं राम राम नमस्कार कहते हैं। ऐसे ही फोन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहना और पसंद करते हम जानते हैं। काफ़ी काफ़ी जो मैंने सवाल किया था काफ़ी जवाब आया है, सही जवाब है, सही जवाब भी नहीं है। शुक्रवार को हम आएंगे, शुक्रवार को हम रहेंगे रेडियो पर, आप जानते ही 11 बजे से 3 बजे तक हम रहेंगे। सभी को जो फरमाइश से हम जरूर पूरा करेंगे, और यहाँ से हम आप लोग के न्यूज से ले जाते हैं, न्यूज सुनते हैं और कुछ रेखनामा सुनते हैं, उसके बाद हम आते हैं कुछ बात फिन करेंगे और वहां से हम कहेंगे फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय बाय, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए।
1: कातुन का तौर आने धराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maximaal van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जी, हमारे सुनने वाले अभी आप सुने थे कुछ न्यूज और कुछ रेखलामा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम, हमारे हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो गया है। हम आपसे मिलेंगे फ्रेडा के शुक्रवार को, हम जरूर आपसे मिलेंगे और बहुत बातें करेंगे। ऐप द्वारा बहुत गाने हैं जो मुझे आप लोग तक पहुँचाना है, और यहाँ से हम कहते हैं बाय बाय जवाई जवाई। और यहाँ से हमारा कोलीग जॉनी नंबर वन प्रोग्राम को लेते हैं, और आप सुनते रहना प्रोग्राम को।

श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को एक शुभ दिवस प्रकट हुए। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता। हर बार की तरह आज भी कहती हूँ, इस पल भी कहती हूँ कि हार्दिक से स्वागत हो।

सुंदर अति सुंदर कृष्ण भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण कर ली है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्रोग्राम में। भक्तिमाला प्रोग्राम यहाँ से जिसमें हम गोटा लगाते हैं एनर्जी उपलब्ध करने के लिए, ताकि हम अपना जीवन के साथ साथ ये दिन जो मिले हैं इसे हम बहुत प्यार के साथ बहुत खुशी के साथ इसे गुजारें। कम चीज़ों में भी बड़ी खुशी मिल सकती है, कम चीज़ों में बड़ी खुशी मिल सकती है, बस नज़रिया चाहिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है वो हार गया है, वो हार गया है जिसने संसार को बदलने की कोशिश किया गया है, पर जिसने खुद को बदल लिया है वो जीत गया है। और जो जीता वही

कहते कि भी ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को राम राम हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जरिए के सुप्रभात। सुप्रभात मेरे सभी प्यारे सुनने वालों के लिए, जिसने जीवन का वही रिश्ता सच्चा है मेरे दोस्त, कि जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कितना सुंदर बात है ना। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है हम सभी को। हाँ, परमात्मा दोनों तरह से हम सभी को आजमाता है, कभी देकर और कभी लेकर। सुप्रभात हो, सुप्रभात हो आज के दिन।

मार रतते रतते मदर इंडिया के ये फिल्मी गाना के धुनें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवरिया रामा रामा रतते रतते। बदल जाओ मेरे दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कसो, हर हाल में चलना तो सीखो मेरे दोस्त।

अति सुंदर मेरे दोस्त, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी ओम उप ते लादन। एक उम्र के बाद मेरे दोस्तों, उस उम्र की बात उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बात याद आती है, उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र फिर उम्र भर

सूर्य देव जैसे सूर्य उदय के होने होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाता है।

अवश्य तीनों लोक के मालिक कृपा बरसा दो ना। सुप्रभात है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। किसी को खुशी देकर यदि आप खुश होते ना तो मेरे दोस्त, तो यकीनन मानिए आप बहुत खूबसूरत इंसान हो। हंसते रहिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन अच्छा हो या बुरा, वह पर ये पल जो है वो जरूर से अच्छा, जो हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा ही होगा। मेरे राम कहाँ हो प्रभु जी।

कितने दर्द भरी बयान, कितनी दर्द भरी पुकार हम अपने इष्ट से करते हैं, और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वही एक तो है जो हमारा सुनता है। दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है मेरे दोस्त, कि ईश्वर हम सबको वो खुशी दे जिसे आप और मैं रोज़ ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से

0: जीवन के सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। वर्तमान जो एक बार चला जाए ना दोस्त, तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और वर्तमान क्या है? हाँ, वर्तमान ये है कि आज इस वक्त इस पल, ये पल जो है यही हम सबके वर्तमान है। ये गुजर गया तो गए।
1: जय बजरंग।

जय बजरंग बली, दिल से फैसला करो मेरे दोस्त कि तुम्हें क्या करना है। दिल और दिमाग से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग तरीका निकाल ही लेगा। दिल और दिमाग के ये बात है कि हम दिल से सोचे और दिमाग उसका तरीका निकाल देता है। आपका दिन अच्छा हो और अच्छा हो कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में हो। अपने आप को ख्याल भी रखना।

सुनाएं आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत है जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। हे संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

चंपा और सुन तारा, लता और किशोर जी ने सुनाए, फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे सुनने वालों, हम क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू हैं। हाँ, जीवन है दो पहलू से बनाए हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इंतकान। इंतकान सुनने वालों, हाँ इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की

0: खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। जो देन हाग न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है, देन हाग न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, सोफिया देगन कॉमन फन सेल्फ हुड, Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen. Mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.
1: Kom maar, ja.

द्वारा शेयर किया गया है। हम देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने दिन ए नसीफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि terwijl we dingen uitstellen, terwijl we dingen uitstellen, gaat het leven voorbij. कुछ नहीं अर्जताल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ देस सेन ऑलटेट इन गदाख्तन, हाउ देस सेन ऑलटेट इन गदाख्तन, एंड दैट सेन एक विल है या एक विल है, एक कान है लुक्ट में। ये एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है, एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाए आपको, हम आपसे बता दें आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नेखती फैफन से फंतखिया, वही मशहूर वही है तक फिल्म।

शादीशुदा घर, अनहुलक इस आस अनहाउस। हाँ, ऐसे फर्क लाइक कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अनहाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। आस अन लंप है नित मेर दूत, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते, जो नहीं जलते, आस अन लंप है नित मेर दूत खाये नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाउस, आस अन लंप, आस अन लंप है नित मेर दूत खाये नित अब सुख नार अन न्यू हाउस मार ये रिपेयर द लंप। संतोष मन, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है, संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज, नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जुलाई के 28 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहो रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से नीदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले शांता के जरिए से प्रोग्राम सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

वो कौन ऐसी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। अभी आपने मेरे हिस्से का प्रोग्राम में ओपनिंग सिलेक्शन पद्माश्री मोहम्मद रफी से सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

हसीन हसीन वादियों, उनसे कह दो कि जिसका था तुम्हें इंतज़ार वो आ गया। अभी आपने अनवर हुसैन से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहून के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में, आप फाहून रेडियो पे चून है। इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 1:30 बजने में।

दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जलाकर रख दिया। किस्मत ने देखी यार मेरा दिल तड़पा के रख दिया। अभी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है मलहर।

प्रीतम तुम मेरे रहोगे सदा ये वादा करो। अभी आपने सुरेश वरकर और उषा खन्ना से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

भैयारों ने मुझे बुलाया, भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे, संगीतकार राजेश रोशन और इस गीत का लेखक है अमित खन्ना। बेवफा मिलता है, बेवफा मिलता है, वफा मिलता नहीं, दर्द मिलता है, दुआ मिलता नहीं,

वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना, इसमें देखा जाए तो 1:45 का वक्त है, आप फाहों रेडियो पर चुने।

हम भी न माने और तुम भी न माने। अभी आपने आशा भोसले और सबीर कुमार से गीत सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। मोहब्बत को मेरी तूने दौलत समझकर, मोहब्बत को मेरी तूने दौलत समझकर इकरार किया। दौलत नहीं तो फिर क्यों मेरे मोहब्बत से इनकार किया।

दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके तन्हा ही रह गए। अभी आपने सलमा आगा से गीत को सुना।

0: समझे?
1: नहीं।
0: लड़का आगे बढ़ता है,
1: हाँ।
0: लड़की पीछे हटती है,
1: फिर
0: लड़का लड़की को पकड़ लेता है,
1: फिर
0: लड़की शर्माकर मुस्कुरा दे, तब पर
1: नहीं समझा।

मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे। अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले से गीत को सुना। इसमें देखा जाए तो 2:07 व्यतीत हो चुका है। आप चून है रेडियो फाहुन पर।

लाखों तारे आसमान पर एक मगर ढूंढे न मिला। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत को सुना। सुंदरता का बहता सागर है तू, सुंदरता का बहता सागर है तू, तेरे लिए है ये रूप की बादल, आसमां से तारा तारे तोड़कर तेरी मांग सजाऊं और सारी खुशियां तेरे कदमों में निछावर करूं।

नीली नीली घटा भीगी भीगी नशा। अभी आपने मुकेश और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे। संगीतकार उषा खन्ना और इस गीत का लेखक है मनोहर।

ध्रुत है मिलन की साथी चले आओ। अभी आपने पद्माश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। संगीतकार एरदे बर्मन और इस गीत का लेखक है मजरू सुल्तान।

दिल तूने दिया और दिल मैंने लिया, फिर भी दुनिया जले तो हम क्या करें। अभी आपने मुकेश और गीता दत्त से गीत को सुना है, इसमें देखा जाए तो ढाई बज रहा है हमारा और आपका मिलन 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

दुनिया जलती है तो उसे जलने दो और ये प्रेम का रिश्ता चलने दो। अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले से गीत को सुना।

दिल उसे दो जो जहाँ दे दे। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे।

दुनिया जब जलती है तो कितना मजा आता है। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत सुना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत का लेखक है आनंद बख्शी।

साथिया नहीं जाना कि ये ना लगे। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसले से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

मुस्कुरा। अफसोस की बात है कि गीत को यहीं से मुझे रोकना पड़ा। इसमें देखा जाए तो 3 मिनट बाकी है 3 बजने में।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद में बीबी साहबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगल को अपना मिलन होगा और हमारे बाद रेडियो फाहून के अनाउंसर साथी के जरिए से आप प्रोग्राम को बाकी के सुनेंगे। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा

मेरे बीच, आपके और मेरे बीच कुछ आखिरी नहीं है सिवाय आखिरी सांस के। तो आपको हम लेकर चलते हैं अदनान सामी की आवाज में।

दीवाने गोल्डन मेलोडीज ऑफ आनंद ने गोल्डन मेलोडीज हम देखे तो अदनान साहनी जी की, जी हाँ, और साथ दे रहे थे आशा भोसले जी। वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है वो, मेरी जिंदगी का आधार और मेरी सांसों का तार है वो। कितने भी लड़ ले झगड़ ले पर मेरे लिए, जी हाँ, पर मेरे लिए बस प्यार है वो। यहाँ हम सुनेंगे अल्ताफ राजा की आवाज में।

राजा से जब से दूर लगे रहने हो तुम। कितने अच्छे अच्छे लफ्ज़े, कितनी दर्द भरे बयान इसमें हमको सुनाई अल्ताफ राजा ने।

मैं सोचती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये कहना चाहती हूँ कि हर लेवन इज टू फेल द वर्ल्ड और मैच स्पेड वाकर द वर्ल्ड एंड हर लेवन इज टू फेल द वर्ल्ड और मैच स्पेड वाकर द वर्ल्ड एंड देंग आन द लुइग डिंगन एंड फरेड फरफेलेंड डिंगन भी जरूर कहना चाहती हूँ सुनने वालों की द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्ट ऑफ जी हाँ द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्ट ऑफ देयर वर्ल्ड इज अंतरान। आपने ठीक सुने कि सबसे महंगा पानी जो संसार में है वो आपके आंसू है, हम सबका आंसू है। द ड्यूर्स्ट फ्लोइस्ट ऑफ देयर वर्ल्ड इज अंतरान है। 89% वाटर एंड 99%

से हमने सुने कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है और हसीन है। अच्छा सुंदर सा गीत इस दिवस में हमने यहाँ से सुने हैं। सबको बहुत सारे प्यार मिले। Het leven is zo voorbij. Het leven kan zo voorbij gaan, voorbij zijn. Geniet van je leven, zeg ik. Geniet van je leven zoals jij het wilt. En niet zoals een ander dat wilt. Het zijn de kleine dingen in het leven die je blijdschap en liefde geven. ऐसे जियो, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाती है।

दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सुनाई हमको आनंद राज आनंद, जी हाँ आनंद राज आनंद से हमने सुने ये सुंदर सा गीत और निकाला गया फिल्म मस्ती से। Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, ik barreer. Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. Om met elkaar overweg te kunnen, heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect. कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, हम नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, बस दूर होके भी दूरी ना लगे इतना सा रिश्ता बनाए रखना। ए इश्क मैंने सुना था कि तू अंधा है, फिर रास्ता मेरे दिल का बताया किसने। इश्क करते हो और बर्बादी से डरते हो, बड़े नादान हो तुम साहेब।

सोनू निगम की आवाज में हमने सुने कि सब कुछ भुला दिया। फिल्म का नाम हम देखे तो हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमने सुने सोनू निगम।

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इजहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता क्या होते रहो और डर भरे गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत आप सभी के लिए माइटी मुकेश तैयार हो गया है। मैं राही भटकने वाला हूँ, क्या जाने मटवाला हूँ।
1: मैं कौन हूँ,

छुपाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। छुपाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें सब काम याद नहीं। जिन्हें पन्ना मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो, जिन्हें पन्ना मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो। जो बर्बाद हुई उन्हें कोई हिसाब नहीं।

ना जताना, ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्ते दिल से निभाना जरूरी है।

और तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकनहा सॉन्ग के प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर कहीं नहीं आते। किशोर दा के मीठी आवाज में आपकी कसम फिल्म के नाम है

सबसे ज्यादा हिट फिल्में वाले स्टार्स के लिस्ट में शाहरुख, सलमान या आमिर के नाम नहीं आती है।

चलिए बताते हैं आपको इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मी देने वाले टॉप स्टार्स के बारे में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्रा 80 के दशक के सुपरस्टार है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में में काम किए, जिनमें 237 फिल्मों में लीड रोल में नजर आए। इनमें 93 तक फिल्मों में बॉक्स ऑफिस हिट हुए। धर्मेंद्रा के बाद दोस्तों आती है वो कौन हो सकता है, मैं गीत पेश करूंगा, आपको जरूर मालूम हो जाएगा कि वो कौन है।

धर्मेंद्रा के बाद इस लिस्ट में जितेंद्रा के नाम आता है। जितेंद्रा ने अपने कैरियर में 209 फिल्मों में काम किया, जिसमें 69 हिट रही। और जितेंद्रा के बाद दोस्तों वो कौन हो सकता है?

जोशो जितेंद्रा के बाद लंबू डाडा अमिताभ, अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। एक दौर में लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते परेशान रहे अमिताभ ने करीब 200 फिल्म से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और अमिताभ के बाद दोस्तों आप जानते हैं अमिताभ का 96 नेहल शस्त्र फिल्में जो हिट रही, और अमिताभ के बाद वो कौन हो सकता है,

कलाना जाने चांद सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब से श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आज है मंगलवार, फ्राइडेज 28 जुली। घड़ी की ओर देखा जाए तो 3:30 बज गया है। नॉर्मल 101 बखेरे मेट में न्यूज़मैन से मार मार एक मुद अरखस न तू तो हम बोली आप लोग को हम अपना समाचार सुना देते। अभी आप लोग राजेंद्र द्वारका से प्रोग्राम को सुना है, उससे पहले बीबी साहिबा रहीम बख से, उससे पहले आप लोग सुना है और वो है अनिल चगरूप से। तो ऐसा प्रोग्राम हमारे कुलेखा आपको बनाकर सुनाया है। अब यहाँ से आपको एक घंटा सूरीनामी का न्यूज़ और देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हम लेकर चलते हैं सूरीनाम की ओर और हम जानते हैं मैक आंद्रियो की ओर, जो मनोरथ के बोली से मिनिस्टर फांस यूसीसी एंड पॉलिसी के बोले हैं, बोले बहुत बड़का फौद करी से बोले मिनिस्टर यूसीसी के और बोले है हनीस मनोरथ के बोले उज्जोन बोल ले रहा बिगिनिए में बड़का बात बोल ले रहा बोले नो दैट्स मी और बोले बोल ले रहा मुंह से नो दैट्स मी और बोले है गा नो दैट्स मी जो आउट मिनिस्टर रहा आरबेट के ऑफिस भी डायरेक्टर भी रहा बोले ओकर कारण बोले बहुत क्रिटिक पावे है और बोले एक बरिश में बोले भला कौन चीज दिखाई पाई बोले ओके कम से कम दुई बरिश चाहेगा क्रिमिनली टाइट के बारे में मां बोले ओमदा तू वोट तो निकाल दे से नो दैट्स मी चोरवन के तो बोले ओकर कारण हम जनता ओके एक सुरतु के चिढ़ावे है हनीश मनोरथ के चिढ़ावे है कि तू नो टच मी मोरो बकी देखो कितना जबर क्रिमिनली तय दसवा में होवे है। तो ये बार बोले है स्टीफन मैक आंद्रियो आउट मिनिस्टर आरबेट के बोले है बोले इतना क्रिटिक है ओकर ऊपर सोवेल बेना और पार्लियामेंट के आदमी भी ओकर ऊपर क्रिटिक करे है बोले क्रिमिनल बोले ना अनपाक करे है बोले सेल्फ पॉलिसी में इतना क्रिमिनल है स्कैंडल एंड कॉर्प्स पॉलिसी में और बोले है अन अन अन मैक आंद्रियो मिनिस्टर रहिम तो मुद्दे क्राइकन ओम से इंतवेरकन बोले ओके चाहे एन वेरक होवे के भैया एक बरिश हुई गब तुझे ये एन वेरक करे एन वो वही तो आलमाल दीवनीर यूरिस्टिस और बोले तखलाई कर तेल बोले मनाद रख कर कि आंद्रियो बोले है कम्युनिकासी बोले बहुत बलांगा रही कर रोल हुए है और बोले मिनिस्टर हनीश मनोरथ बोले है बोले जब से भीतर गईल है मेरे बपाल ऐसा को करे रहा कि क्रिमिनल बोले हमें ना टच करिए और बोले मैं आनू लांगा का निकोरो बोले रहा तो बोले है इस फन मीनिंग दैट द मनीर फन कमिजेर द मिनिस्टर नॉक सीज अख्तर फलक और बोले दिस एक देंग दैट ये पास तुरे यार में कुछ दिखाई पियो बोले एकर कारण बोले ओके क्रिएरियन बपाले स्फेर दिस मेंसन मुतन ओक वेटन व्हाट एंड हुड बपाले डिंगन गेसेग्ड मुत वर्डन। तो ये बात है हनीश मनोरथ के सब बोले भैया अब देखो भैल है का अधीन हीकल ट्विंकल सूरीनाम में भी जइयो भैया सब दुकान में जइयो सब दुकान में जइयो तो आप लोग पाई पइयो पैसा पाई सकियो चाहे जो दुकान में जइए जइए एरो आप लोग यानी कि मिल सके हैं।

यहाँ पे बतावे है अधीन बोले है, बोले चाहे जोन दुकान में जइयो चिनुआ बोले पैसा वेसल करे है और सब पैसा तुरावे है, बोले उ चीज न चाही बोले चित्रा चीज बोले सेंट्रल बारे भैया आदमी लोन जोन दुकानदारन है बहु मारक ओके एरो डॉलर काम है अपन सौदा इम्पोर्ट करे के भाई जइयो कीने न महंगा में पइयो ऐसे उ सब अपने कीन के तुरे है तुरावे है तो हम लोग के देना फोर सीटर ने अश्विन अधीन है। बोले अफकुर करे चीजों के बारे में बोले डॉलर और कोर्स बोले चाहेगा हां तेर होए के बोले उसे अपने बपाल करे कितना उसे बेची कोच करेगा और बोले मैन खाद खोन फेर्दर एंड फिन दैट द विंकल्स अ सॉर्ट फॉर कम व्यू सेन दैट मुट स्टॉपन के तो तू स्टॉप कर पाइए भैया कब तू स्टॉप करिए ये तो देश में ओवरलोड एरो और डॉलर भरल ले भैया कि कोई ना पूछे वाला है तब कोई ना बेची भैया तो आदमी जाएगा अपन बैंकॉक में बेचेगा बाकी सुरीनाम देश में जब देखो तो एरो तो कॉर्थ है तो डॉलर तो कॉर्थ है आदमी कीन कीन अपन धरे भैया जो अपन सौदा पानी चलावे जैसे अपन उस अपन दुकान और सब चलाई सके है तो यहाँ बतावे है मेन खार खून फेरदर और बतावे हैगा एनडी पेयर बोले है ही बोले इकोनॉमी से साक है बोले चाहे एक बारे में बोले खूब मोई से कंट्रोल करे के अधीर ए सेल्फ फोर्स स्टैंडर्ड इरफान ओम नेतास पॉलिसिया खेंतन ओक इकोनॉमी से कंट्रोल दिनस्तन फन बॉडी कैम्स फोर सीन बोले जैसे स्कोटू के लगावल है बॉडी कैम बोले जो आदमी जा है बोले हैगा एक रूमी साके के जो कंट्रोल दीस जा है दुकान में बोले ओके भी चाहे बॉडी कैम्स लगावे के जो ने तू देख सके को दुकानदार वासे चूकू डाले इसे का क्योंकर सौदवा ना देखे कि महंगा में बेचे है नहीं चिनुआ कोला पिया दे और जे कंट्रोल करी बोली बड़ा ठंडा कोला हम कुछ ना देखीला तब बोले चाहे बॉडी स्कैम लगाओ के जो ने आदमी बोले कि तू चूकू ना ले ले भैया बॉडी स्कैमवा ऊपरा है पाका सकवा हम कोई डार दी कोई जान पइयो बॉडी स्कैमवा बूते भी है रे भैया अधी वत प्राचीनी मान जब आदमी मांगी चोरी करे तो सब कर सके है मैं खुद ये देंक इस नाम लग तो हमेशा फैल तो हो क्वा करप्शी माँ हम लोग के देश में करप्शी भैया करप्शी इतना ज़्यादा है जैसे जमीन में से कसावा तो लगा डेले एक पेड़ तो ढेर के कसावा निकले लगे जमीन में और ओकर शोर जैसे बांस यहाँ से हुआ घुसे भैया जो उच्चीन होवे के नाम ना लेवे है उच्चीन होवे के नाम ले अब तो सरनाम में बहुत बकैन थे कि हुआ करप्शी जो है कॉरस पॉलिसी श्री नाम में स्कोतू और ज़्यादा लेवे भैया बहुत ज़्यादा लेवे तो निकले अंतिक करप्शन वेद फ्रॉड के बारे में बाकी तो नहीं तो है पे कहीं एन परसों किसीन के को जबरदस्त ओके बूटू आइल है और मांगे काल्पनिक वेद निकारे तो लो भैया तो तू भैया एगो बताई है इतना ढेर काल्पनिक वेद निकारियो लेकिन खाती वेल वर्क वन सेल्फ दी मेंस फाइनली डिजाइन ख्रोत पुफ नाम लग दी पुलिसी अगेंट अब देखो कैसे रात के सिपाही एगो बड़का क्रिमिनल के भगा दे से भाई बड़का दृश्य क्रिमिनल कोलंबिया के भगा दे से अब पकड़ाई के दुगो बन है जब देखो तो सिपाही इन द पिक्चर आ

सोचे है, उस सोचे है, बोले उस सोचे होएगा, बोले वही फॉल्क्स मिनिस्टर पैट्रिक ब्रुनिंग्स, बोले जो तेल और खास ओली के बारे में बोले ओके फरमुदलक है कि खेमिस ओरसाक इन एन इंटरव्यू में बताए से खेमिस है और बोले हैगा फरमुदलक फॉर ओरसाक टरवेल द डेफिनेटिव एनालिसिस द रिजल्टेट फ्रॉम अ फिश मॉन्स्टर ऑफ 10 अगस्तस tegemoet worden gezien. Toe je baant he, hamari janta. Volgens minister Bruning stond al meteen na de waarneming de veiligheid van de bewoners langs de riviercentraal. Ortolonjano ketra kwekskoutu ke karma se kamara ma se chori ho jai bhaiya. De kamara ma se ja chori ho jai, container ma se chori ho jai, ghar ke piche se chori ho jai. To skoutuwe ke haat na hai bhaan na bole lu chori kari se. Maar de eet jab tu de aune biswaas na hai, otna nir kwek laas hoi ge hai. Ort word gezeg, miskien is de kwek na gedumpt in de Samaka rivier waar er zoveel vissen namelijk dood is. Ja, betalen wij hebben direct geadviseerd om geen water uit de rivier te gebruiken en geen vis te consumeren totdat duidelijk is wat er precies aan de hand is. De Ibar bolle he, ik er maar mee. Gezondheidszorg, bolle PHOK, per Amerikaans Gezondheidsorganisatie, Bureau van Gezondheid, bolle BOGK, bolle hega, omachirina, jahink haike, bolle 15 tarik juli, mego monster, geile Frans Guyana, en bolle huape seven onderzoeken in macharia kaise maral he, en bolle vervolgens, bolle ujaiga gespecialiseerde instituut mee, Frankrijk mee, en huape seven. हिंसों के अंदोषु करेगा बताई गई है अबे एकर अंदोषु हुए भैया फ्रांस को याना में उकर बाद में जाएगा फ्रांकरेक में भी अंदोषु होएगा कि मच्छरियाँ कैसे कैसे मरल है प्यारे प्यारे जनता अब देखो यहाँ का बोले फेस तुलन जाने हैं कौन ची है तो फेस भैया वो हैगा फेस सेक्रेटर स्वामी गिरधारी का बोले है फर आदमी दी फॉल्कंस फेस सेक्रेटर गिरधारी एक बरिस अयार खलीदन सामलीफन ऑन स्टोन पेन अंतरीनेन रखेरिंग सिमोन के बोले इन मिडल्स ओम खसलाकन इन आदम नोड बोले अब सांस ना ले पावे है बोले ए बोले रहा स्वामी गिरधारी बोले रहा फेस के और हैगा फरीनिंग फन इकोनॉमिस अन इकोनॉम फन सुरीनाम और बोले एक बड़ी सुई बोले अब जनता बोले सांस ना ले पावे है हुआले फिन दैट इट नॉक द फ्रूक इज ओम डेफिनेटिव ओरडील टू फेलन स्प्रेकंड van het gevoerde beleid volgens het boek delen. De Gidhari Kerbari me bole he, Jennifer Simon ke, en natuurlijk Jennifer Simon enige na he, Rusland hega vice-president, en jitra ekor partijen he, joan okar senge, sab milke kaam kere he, iedereen moet zich dit luisteren, want jullie zitten allemaal in de regering. Niet alleen Jennifer Simon zit daar. Zij is de laatste persoon. Maar iedereen verantwoordelijk om ons land namelijk beter te krijgen. Bole Simons, bole mo kinky assisteem. Aislim bat ya, abe batari, hanis manorat, bole ra, no touch me. I bole mo kinky assisteem. Santo kika bole ra, bole wo seting. Ta is heb een woord ik kego gebruik kere, maar waar na karpawe dus to. Was volgens hem juist de grootste belofte samenleven ke. O bole hege. Economie betalen hega, bolle afgerekend met oude bestuurspraktijken. Iban bolle Girdhari, presentiële commissie bolle hega, die bieten hoe is salme, bolle is op ingesteld bij la, of bolle hega kritiek of vanuit de samenleving Girdhari, abbe bolle jaad kerehe, die president tijdens haar eerste. De
eerste persconferentie में बोले गिरधारी बोले हमें खूब मोई से बोले हमें याद है।

दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे। तो हमारा समाचार आज के खत्म आने को हुआ है। तो देखा जाए भैया, हम मस्कर द ओवर फारसलान टू बाय सुपरमार्केट क्रीफल एंड में सांदल भैया सूरीनाम की ओर हम जाएला। मास्कर पहिर के गईले ओवर फॉलस स्केटिंग कूद के एगो पेरसेल के स्केटिंग कूद के जाए के दुकान में घुटन ले मेट वापस फिर वापन एगो इन सस्तक यार के बाउनर्स के और दैट मोमेंट ओके ओवर फॉल करी से ओकर प्रसिये में भैया वो काम करत रहा है वेयर डू द ओवर फॉलर ओवर मिस्टर और बोले नार द स्लैब कामर खबरा वर्स एंड हंडन एंड फुटन नेचुरल क्लीनिंग सर्जन का बांधी से भैया एगो 21-jarige KH die zich in de woning bevond werd eveneens ook onder schot gehouden. Ook pakkelijke baan is er bij jou liggen. Ambulancebioken liggen bij. Terwijl de slachtoffer gekneveld waren doorzochten de daders zowel de woning als de supermarkt. Daarbij haalden ze alles overhoop. Criminelen gingen er vandoor met onbekende geldbedrag. Dollars, Amerikaanse dollars, Surinaamse dollars liggen. Er is een bagge gegaan. Na de overval lieten de daders slachtoffer gekneveld achter en vluchten. En zij een geriestande auto te noteren. Ja, no, to bole noteren. Hamapa, bij jou, manoret, ke bole la bole crimineel saka bail he. Nakali ehi bahu deed he. Ja, bij de kobron fiesele ke gail he. Ga digo crimineel sau hajar SRD. Lachman straat me bij jou, ego slijter he. Me gusal he. और हंडत दैसन लेके चल गए है जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में जो पहले कोपर नाम स्त्रात रहा 4:30 सवेरे के बाद थे और जैसे मेरे गए सौंदा के मिला के तो देखे वो दुकान फुकान सब तुरल है। तो ये बात है हमारी जनता 6 स्टूडेंट सुरीनाम वाला वो सब सिदेर करता क्यूबा में दतरा के डिप्लोमा पाई गई है दोस्तों। से सुरीनाम से स्टूडेंट बहाल आर्टन डिप्लोमा ऑफ क्यूबा में से तो बहुत बहुत बधाई है आप सबके। तो यहाँ सबके नाम निकल न्यू आर्टन से अलान दिल रोहिली टर्नहोरफ साफिला विलम शर्मा कास्टेल काजल खुनखुन एंड अभिगाइल हिंजन De groep bestaat uit 4 vrouwen en 2 mannen. Volgende gedurende 7 jaar de medische opleiding hebben gevolgd in Cuba. Wat hij hoor. तो हमारे सुरीनाम के लोग समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

और बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले गीत के ओर जाते हैं और वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजो की और कहानी है फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही
0: सच्चे कहना
1: दो दिन

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते के ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minnesummerfestival.nl.
1: दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा

और दोस्तों आज हम कुछ फिजी का सॉन्ग आप लोग को फिर से सुनाएंगे।

मेरा रंगला और राम किसुन कविता, राम किसुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना

और हम तेरे शहर में आई है, और हम तेरे शहर में जो आई है तो एक मुसाफिर की तरह तेरे शहर में हम आई है। और ये गजल आज हम चलाते हैं और वो है यूसुफ मालिक कवाल का। यूसुफ मालिक कवाल का ये गजल जो आप लोग को हम आज सुनाएंगे दोस्तों। और हम चलते हैं, खूबसूरत है ये आंखें तेरी, तलत अजीज का ये एक गजल है जो आप सबके लिए हम चलाते हैं। और वो है खूबसूरत है आंखें तेरी, और इस गीत को, इस गजल को गाया है और वो है तलत अजीज ने।

और खूबसूरत है, खूबसूरत है आंखें तेरी, और रात को जागना छोड़ दे। अगर आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है तो सोना तो चाहिए ना, क्यों रात भर जागते हैं लोग। और वो आदमी जो रात भर जागते हैं उसको कई कारण होता है, कभी कभी रात को जागना उसको कहते हैं कि उसको नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो कहते हैं कि मूड पे कुछ है भैया, तो बोले नकाइनी स्लाप मेंस, तो बोले हैगा दी इस नाम लेकिन हेफ्टी प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम है या प्यार के दर्द है या कुछ है तो रात के नींद कहाँ से आई भाई। तो ये गीत को गाया है खूबसूरत है आंखें तेरी, और ये तलत अजीज ने गाया है। और हम चलते हैं और गजल के ओर, है जिंदगी कितना खूबसूरत है, ये जिंदगी कितना खूबसूरत है, वॉइस ऑफ ओस्मान मीर का ये गीत है जो आपको हम यहां से सुनाते हैं।

है जिंदगी कितनी खूबसूरत कि जीने की कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। और ये है खूबसूरत फेमस गजल बाय उस्मान मीर का ये गाया हुआ और गजल सॉन्ग है। और इस गीत को लिखा है सहबीना अदीब। उसके बाद हम चलते एक ब्यूटीफुल गजल की ओर और ये है पंकज उदास का गाया हुआ ये सॉन्ग है दुख सुख था एक सबका। दुख सुख जो है तो सबका है दोस्तों, आओ सुना जाए। और ये है पंकज उदास का गाया हुआ ये गजल।

दुख सुख का एक सभा और सबका है, कभी एक जमाना था इस गीत को गाया है, और वो है पंकज उदास ने इस गजल को आप सबको लिए बहुत प्यार से गाया है। एक ब्यूटीफुल गजल दुख सुख का, दुख सुख का और एक सबका है। उसके बाद तो हम जाते हैं एक और गजल के ओर हम बढ़ते हैं और पंकज उदास के ओर हम जाते हैं। जॉनी नंबर वन है और आज आप लोग को हम गजल से सेवा करते हैं। एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैं खाना आए गमे जिंदगी और सफर गोरखपुरी का ये सॉन्ग है। एल्बम नशा 1999 का है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए।

और एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा। और ये गीत को गाया है पंकज उदास ने, इस गजल को बहुत अच्छा से गाया। हम चलते हैं, पत्थर बना दिया है और उसने बनाया है पत्थर, पत्थर को बनाया है अनूप जलोता ने, उसको एक गजल जो आपको हम जरूर सुनाएंगे।

बना दिया है। आज हम आप लोग को कुछ गजल सुनाएंगे दोस्तों, और गजल में कुछ मजा और है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, गजल का मजा और कुछ है। तो हम सोचते हैं

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोन है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोन है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे आशा परीक सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ चल रही कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

कौन मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकता जी का ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मूवी के नाम थे असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है मोफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनी का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आलका याग्निक कुमार शानू के ओरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरीग्रीन कुमार शानू एंड आलका याग्निक।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

और दोस्तों मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ न फेटा। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

एक गीत अब की बरिश फिल्म क्रांति जो थे एक जमाना में एक समय पे सूरीनाम देश में और ये बहुत पॉपुलर फिल्म थे दोस्तों, आपको जरूर हम बताते हैं। और इस फिल्म क्रांति जो है इस गीत को आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम फिर आप लोग को सुनाते हैं।

और अब की बरसे भर दे और फिल्म क्रांति का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आप लोग को हमने सुना दिया है। गदर एक मूवी था जो लोग को बहुत पसंद थे और गदर तू भी आ गया है, लेकिन ये सॉन्ग जो है वो है गदर एन का सॉन्ग है।

और आया हूँ आया दिल का लुटेरा, रुस्तिग नummers ga ik vandaag mensen draaien en ja goed, dat moet ook een keertje kunnen. तो हम चलते हैं और ये है अंजना जोंग 1969 का, जिसमें राजेंद्र कुमार बबीता ने काम किया है।

एन रिम झिम से गीत सामने गाए और राजेंद्र कुमार बबीता का कुछ हम आप सॉन्ग सुनाएंगे जिस फिल्म में काम किए हैं, आप एक और सुना जाए।

है तो मानता नहीं है दोस्तों, और ये एक दिल है तो वो क्या वो मानेंगे जो किसी से प्यार हो जाता है, तो वो मांगते हैं देखने को, सुनने को, देखने को, चाहने को, छूने को। ये दिल ऐसे ही है दोस्तों।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारी साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज। दोस्तों और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आज अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 MHz पर और नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूं। दोस्तों मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बहार नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर हम चलते हैं। पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो निकटतम 2006 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का शायर।

खैर हो। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है, और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहान प्रोग्राम हमारा चलते हैं और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज geweldig mooi दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोय। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहां से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारे है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

जरूर दोस्तों, मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दोस्त सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी कति होंद एन एनन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

देखी जिंदगी देने वाली दोस्तों कितने रोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

में और तुझको मेरा प्यार पुकारे। फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त, माला सिन्हा और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग्स हम आपको सुनाया है।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की, और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

क्षमा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, क्षमा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन, इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब, जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे,

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

तो गीत की कहानी आपने सुन चुके हैं, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है गर्ज मैं आपको ये गीत सुनाऊं? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म गंवार में से निकाले हमने नौशाद अली की साँच पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार कमारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के ट्रिब्यूट के लिए निकिति शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारिस थे। लता जी की आवाज में

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की वो परफॉर्मेंस हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फ़ी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जय किशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की है। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। आप सबको एक शुभ शाम पेश करते हुए, आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको गीत सुना रहे हैं। ये क्या ख्याल है?

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए लता जी के पास बाद पास नहीं बाद लता जी के बाद लता जी और मन्ना डे है। जी हाँ, इन दोनों के ये प्रेम कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से मन्ना डे जी और लता जी फिल्म

कि हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर निकली तुई से सख का ये गीत लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की। ये अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये इस तरह से है।

0: लो ये कली मुस्काई टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, ये गीत इस तरह से आ रहा, गीता रॉय जी ने गीत इंद्रियम फेफ्ते पुरानी गीत है, फिल्म बाज में से निकाले हैं। क्या ख्याल है?
1: कर जाओ।

वाह क्या बात है गीता जी, निगेटिन 53 में से निकाले हैं। ओपन एयर के साथ पर ये गीत हमने पेश की आप सुनने वाले श्रोताओं के लिए। उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा कि बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है, 1953 निगेटिन 53 का फिल्म बाज में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, हमने प्लेयर में कब के रखे लेकिन अभी चलाए नहीं जी। हाँ

ये जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुना है, फिल्म बिंदियाँ बिंदियाँ में से निकाले हैं नेहा तीन शस्त्र का ये गीत और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं।

फिल्म भाई भाई में से निकाले हैं और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और बढ़ते हैं फिल्म कन्यादान की ओर। फिल्म कन्यादान बहुत लोगों ने देखे हैं, कन्यादान में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। निकिती निघ्न शस्त्र का ये फिल्म है शंकर जय किशन के साज पर। चलिए लेकिन ये गीत आप कम सुनते होंगे क्योंकि कम शायद चल रहा होगा। बहरहाल कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर, लता जी की आवाज में फिल्म फिल्म फिल्म कन्यादान में से निकाले हैं नीकती नेक ने सस्त होनी सौ उनहत्तर का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: जले।
1: रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या ना जले, ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म है जिंदगी और तूफान निगिन फैफ सैफ तक 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं और शायद आप भी नहीं, और अगर सुने होंगे तो मेरी बैड लक है, मेरी बदनसीबी है। बहरहाल चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से। ये गीत की शब्दे जो है, जी हाँ, इसके शब्दे पर अवश्य ध्यान दीजिए, बहुत प्यारे शब्द हैं और बहुत मतलब भरी। हिंदुस्तानी में लोग सरनामे बोलते रही समझो या के मौत, सुन लीजिए।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए ये गीत हमने निकाले हैं। देखते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान में से 1975 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए एक गीत हम आपको सुनाते हैं और वो ये है, इस तरह से आता है।

गीत गाया पत्थरों ने, यहाँ टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं फिल्म में गीत गाया पत्थरों ने। रामलाल के साज पर महेंद्र कपूर जी और आशा जी दोनों मिलके आपको सुनाए। और अगर मैं गलती नहीं बोलूँगा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जितेंद्र जी की पहली फिल्म थी। जी हाँ, जितेंद्र की पहली फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, और उसी में से हमने निकाले हैं अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, मैथ मुकेश और शारदा जी।